0: বালবালিকালে লাগু ঔষধ দুরুপয়োগ বাঁচাও
1: লাগু ঔষধ সামাজিক অপরাধ হো কোহি কসৈলে প্রয়োগ নগরং বালবালিকালাই লাগু ঔষধ কো প্রয়োগ বাট টাড়া রাখো বালবালিকা কো সুঙ্গত মা ধ্যান দিউ লাগু ঔষধ বাট হুনে হানি র কানুনি পরিণাম কো বারে মা জানকারি দিউ বালবালিকা সঙ্গ নিয়মিত সংবাদ গর্নে গরৌ বালবালিকালাই ঘর মা মায়া র সময় দিনে গরৌ বিদ্যালয় মা জীবন উপযোগী শিক্ষা দিনে গরৌ বালবালিকা কো সকারাত্মক গতিবিধিলাই প্রোৎসাহন গরৌ
2: আন্তরিক মামিলা তথা কানুন মন্ত্রালয় কুচি প্রদীপ দ্বারা জনহিত মা সারি সন্দেশ
3: सूचना सुरुङ जुनबेसी जोड्ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुङ क्षेत्रबाट संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्यका क्रममा माथिल्लो सुरुङबाट ढुङ्गा खस्ने सम्भावना रहेकाले तल्लो फेरा साधन क्षेत्रमा घाँसपात काट्न गाई वस्तु चढाउन तथा आवत जावत गर्ने सम्पूर्ण स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कृपया जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा नजानुहोस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राखिदियोस्। सुनिल जुनबेसी उपभोक्ता समिति सुनिखुम्बु।
4: ए विकास बौद्धतिर कहाँ कुदेको यसरी
5: कलेज खोज्दैछु यार। कक्षा एघारको लागि पढाइ र अनुशासन पनि कडा चाहियो अनि अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि उत्तिकै राम्रो भएको ठाउँ हुनु पर्यो नि।
4: अरे यार त्यसो भए त सिद्धे बौद्ध टुसालको केम्स कलेज जाउ न। तिमीले भनेका यी सबै कुरा त्यही त छ नि।
5: बौद्ध टुसालमा अवस्थित केप्स कलेजमा कक्षा एघारका लागि साइन्स म्यानेजमेन्ट ल तथा ह्युमानिटिज संकायमा नयाँ भर्ना खोलियो। उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि मैत्री सिकाइमा जोड़ दिँदै यहाँ अनुभवी दक्ष एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिकाहरूद्वारा अध्यापन गराइन्छ। सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप र जहिन्दार विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था।
6: आउनुहोस् केप्स कलेज सँगै आफ्नो उज्जवल भविष्यको जग बसाल्नुहोस्।
4: केप्स कलेज बौद्ध टुसाल।
5: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 9712501507 9712501507।
6: सफलताको सही छनौट।

रोगीहरु भाकी कान्छी मेरे नजिक आएछी आफूलाई नि नसमझा एजुकेसन खाएछी वाह दिदी वाह वाह रोगीहरु भाकी कान्छी मेरे नजिक आएछी आफूलाई नि नसमझा एजुकेसन खाएछी।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Sony FM. Studio time.
0: It's 7 p.m.
4: को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोनी एफएम स्टुडियो टाइम
2: 8 PM रातको 8 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई अफसेट प्रेस सोलू दुकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू